0: आगे से आगे जाके देखो, हम पीछे आए हैं ये नहीं सोचो, आगे जा सकते हो। बाप दादा की ड्रामा की मदद मिलती की, अच्छा है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय स्व के परिवर्तन में जय शिवा के सफल सफलता का फ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी निश्चय पर बात नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने की वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लेगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अनुभव करेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सोचो आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रियलिटी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो,
2: देवताएं बने हो। अच्छा, सुन दो
1: सी है प्योरिटी, प्योरिटी रॉयल्टी।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: रिजल्ट देखना

Bonita.

Écoute ça.

Chiqui.

0: enciendo. Vani aur karam to automatically theek ho jayenge. To baap dada aaj mansa sankar lab
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी इसमें तो बात कि सबके दिल में बाबा की याद है, कभी भूल भी जाती है कोई हिसाब किताब के कारण, लेकिन मैं जा रही थी थोड़ा भूलती है। मेरा बाबा ये जिगर से इतना पक्का हो गया है जो चलते फिरते सब करते। मेरा बाबा मेरा ये भूलता नहीं। और बाप को भी

की बातें हर कर्म करते याद रहते।

0: और बाप के दिल में कौन, मेरे बच्चे। ये संबंध संगम युग की सौगात।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सोच के कहो, नहीं तो सब चलता है। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा, मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दो, दिया डायरेक्शन। अपने संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दी मुख से ने, ऐसे त्यार होना ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा, करे करे हलचल Yeah.
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा का ये संकल्प है कि इस शिवरात्रि पर या एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह पीछे इन दिनों में अपने परिचित अपने मोहल्ले वाले अपने दफ्तर के कार्य करने वाले साथी इन्हों को संदेश जरूर दो कि अगर बाप से वर्षा लेना है तो ले लो, ये संदेश जरूर दे दो। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं रहे जो कहे कि हमको अभी लास्ट में क्यों संदेश दिया, थोड़ा पहले तो देते तो हम भी कुछ बना तो लेते, नहीं तो लास्ट में तो सिर्फ आओ प्रभु कहते रहेंगे। आप आए लेना देते रहे तो इस शिवरात्रि पर किसी भी विधि से ऐसा प्रोग्राम आपस में बनाओ जो पहचान वालों को संदेश मिल जाए, फिर रहा उन्हों की तकदीर। लेकिन आपने अपना कार्य पूरा किया तो हर एक को ऐसे किसी भी रूप में उन्हों को संदेश पहुंच जाए, फिर जैसी नेचर जैसा स्वभाव उसी परमान अपने अपने तरीके से संदेश जरूर दो। बड़ा दिन है, खुशखबरी आपको सुनाते तो ये ओलेना निकल जाए। अभी भी प्रोग्राम करते हो तो क्या कहते हैं, ऐसे भी कहती है अभी भी कि हमको तो अभी पता पड़े आपने पहले क्यों नहीं किया। इसलिए बच्चों का बाप दादा का जन्मदिन है, जो पुराने है अपना जन्मदिन कौन सा मनाते, शिवरात्रि मनाते हैं ना, तो इतनों के जन्मदिन पर ये संदेश देने की मिठाई बांटो। ठीक है, बांटेंगे बांटेंगे, हाथ उठाओ, कोई भी वंचित नहीं रहे किसी भी विधि से। फंक्शन करो या पोस्ट द्वारा भेजो, लेकिन कोई रहे नहीं कि किसी भी साधन से उनको संदेश जरूर पहुंचे, वो आप आपस में रहकर तीन चार तरीके बनाओ, फर्क वाले भी अपने सभी कनेक्शन वालों को शिवरात्रि के महत्व का संदेश जरूर दे। पसंद है आज?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

teman Jiwan.

उसमें भी

इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को

0: हो, सुखी रहते हो, कि व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन, इस
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बदल जाती है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा के पास पुकार और दुख की आए बहुत सुनाई देती, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग, बेहद का वैराग और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या के क्यों मैं टाइम नहीं देना। अबे हे बाप दादा के सिक्की लदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अबे संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो, लाइफ सदा काल होती, कभी कभी नहीं। अभी अपना कृपालु दयालु दुखहर्ता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताए तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो, दुखियों के दुख के आवाज तो सुनो। अबे हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक विश्व को दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इससे अभी ऐसी अनुभूति शुरू
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा के पास बच्चों के पत्र वाचित किया, बहुत अच्छी अच्छी मत किया क्या हम आपस
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प क्यों कमजोर हो जाती है जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है, बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा है, और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है। लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आते हैं कि नहीं आते? आते हैं लेकिन मानव बीच बीच में लेकिन आ जाते हैं, आ जाते हैं ना, नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने एक बात नोट की है, मेजॉरिटी प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है, सोचो वो एक शब्द क्या है? एक शब्द क्या है? बोलो टीचर्स, क्या है? पांडव बोलो, क्या है? एक शब्द है, आ गया, याद तो आ गया ना? याद आ गया? अच्छा, एक शब्द है मैं अपमान के रूप में भी मैं आते हैं, और कमजोर करने में भी मैं आते हैं। मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वो ही राइट है, वो ही होना चाहिए, और जब होता नहीं है ये अपमान, अपमान कम है। जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है, मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए, स्वमान भी याद दिलाते हैं, और मैं दे अपमान में भी लाता, मैं दिल शिकस्त भी करता, और मैं दिल खुश भी करता, जिसका अपमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वो अपमान अपना सहन नहीं कर सकेगा। अपमान अपमान सहन नहीं करे। शराबी कोई कहेगा ना, ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ तो अपमान लगेगा। ये अपमान की निशानी।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समझती है कि बहुत जन्म के अलबेले पन के संस्कार पके है ना, तो हो जाता, लेकिन अभी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी बाप दादा के वरदानों को अमर बनाने के लिए सहज विधि ये अपनाओ के अमृत वेले और साथ में कर्म योगी बनने के समय भी बार बार वरदान को रिवाइज कर स्वरूप स्वरूप में स्थित करो, बार बार रिवाइज करो। बाप दादा तो दे देते हैं वरदान।

0: संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहते, इसलिए वरदान को स्वरूप में लाते रहेंगे तो वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। बुद्धि में नहीं, सिर्फ स्वरूप में लाओ। उस नशे में रहो,
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Awesome.

नहीं।

0: अपने चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वायुमंडल को आपकी बहुत ऐसे विश्व में एक घड़ी मानव में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्यों मन का पॉल्यूशन से।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, पार्थक्यता वर्ष के पहले इस वर्ष को किया।

0: bisa di me. Peach me ye. Apna chaat ji karo. Sarva khazane. Jama kitne ki.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अपने जी

समय पाप के संग के रंग में रहते हो ना, तो उन्होंने भी रंग तो बनाया लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो इस स्थूल रंग बना दिया। लेकिन आप सभी

बिस्तर का वृत्त सभी ने लिए है नपका नंबर वार भले है लेकिन ब्रह्मर बनना अर्थात

0: barbecue kebab. Sedap Fitri. Hey Fitri Swaru. Pernah nai berta Swaru pi Fitri tak? Tuh lagi. Fishes aja. क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने हैं? क्यों आपको रंग कौन सा लगा? परमात्मा के संग का रंग तो जैसे परम होली करना आते हैं जो हो चुका वो हो चुका। इससे आप डबल होली 21 जन्म रहते हो, एक जन्म नहीं, क्योंकि संगम के एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों का है। यहां आपने अगर एक सेकंड या एक मिनट सफल किया तो 21 जन्म आपका सफल रहेगा। गारंटी तो ऐसी होली मनाई है। होली करना आता है, जो बीता वो बीत गया होली। और तीसरे रूपरेखा क्या करते हैं, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो आपने भी क्या किया, योग अग्नि से अपने कमजोरियों को, संस्कारों को जो अनेक जन्मों के उल्टे संस्कार है, उसको योग अग्नि से जलाया है ना, जलाया है कि अभी भी जला रहे हैं। जलाया है जो समझते हैं हमने योग अग्नि से अपने पहले के संस्कार जलाया है, जल गए, वो हाथ उठाओ, जल गए कि अभी भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा तो आते हैं। बाप दादा के पास जब अपना चार्ट भेजते हैं ना, तो कहते हैं बहुत तो चले गए, चतुर है ना कहने में, कहते बहुत तो खत्म हो गए, कभी कभी तो राय मर्ज हो जाता है। लेकिन चलना माना चलना, चलने के बाद नाम निशानी नहीं रहता, मारने के बाद शरीर यादगार तो दिखाई देता है ना, लेकिन चलने के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ जलाया, मारा नहीं, जलाया भी, जो बिल्कुल नाम निशान खत्म। तो आप भी सब अपने को नोट करो, संस्कारों को मारा है या चला है, पसंद किए। की सबकी है, आप चलाते हो वो भी चलाते हैं। फिर बनाते बिना चलाने के मनाते नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे, दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ। क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकते।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो फायदा तो क्या है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, फायदे का फायदा नहीं उठाते हो, फायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो, फायदे को रोज रिवाइज करो। क्या वायदा किया? अमृत वेले मिलने के बाद फायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। फायदा क्या किया और फायदा क्या उठा रही है, रियलाइज करो, रिवाइज करो, बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाए। इतने सब इस जन्म के लिए ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील लगा देना और हाजी हाजी करते रहना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, जो चाहे वो कर सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, रूप देख।

Sí.

0: subtle बन गया।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बेफिक्र बच्चा का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेला पन और के हम तो बेफिक्र रहते अलबेला।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है, योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यक
3: Спасибо.

0: शानदार है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई भी थोड़ी किटकिट हो तो अभी चल के पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व की सेवा कर सके, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वो भी करना। भावना से जवाब नहीं देना, क्रोध नहीं करना, इससे भी फर्क पड़ जाता है। देखो यज्ञ के हिस्ट्री में ऐसे बहुत दृष्टांत है जो मारते थे, लेकिन जब कोई बदल सकती है तो आप नहीं बदल सकते हो। शुभ भावना और अपने चलन परिवर्तन हो जाती तो वो भी नरम हो जाती है, गर्म नहीं होते, नरम हो जाते। इसलिए माताएं पहले अपने घरों को, बच्चों को ठीक करो। अच्छा नहीं मानते हैं लेकिन प्यार से चले, गिलानी नहीं करे ज्ञान की, इतना तो हो सकता है ना। चलो क्रोधी है क्या भी है, आदत खराब है, लेकिन ये तो कहे माता जी बहुत अच्छी, हम ऐसे है, लेकिन माता जी इतना प्रभाव तो बदली होना चाहिए ना। फिर देखो सेवा कितनी फैलती है, ठीक है माता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए करते हो ना, ऐसे याद और सेव।

जवाब आप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होते है ना, तो वहां खड़े हो जाओ। ऐसे आपके टॉप की स्टेज सबसे टॉप की है, परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर आपके साथ आके बैठ जाओ। जैसे थक जाती है ना, तो 5 मिनट भी का शांति से बैठ जाती है ना, तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे बीच बीच में बाप के साथ आके बैठ जाओ। सृष्टि चक्कर को देखो, सृष्टि चक्कर में टॉप स्थान कौन सा है? संगम, बारा की सुई टॉप पर दिखाते हो ना, सेवा की फिर

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी सब

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

gelernt.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: करना महसूस भी किया। ये न करके ये करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे, लेकिन उस गलती को अनुभव एक बार करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया। लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती, होती वही बात है। लेकिन जो माया जैसे आजकल के जमाने में चीज वही होती है पुरानी, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देती है जो ऐसे भी नहीं, तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है जो बात का रहस्य वही होता है। उसी रूप में नहीं आती, तो कई बार सोचते हैं ये बात तो पहली वाली तो वो थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीच वही होता है। सब रूप परिवर्तित होते, शीतल सजाई अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से क्या है गैस का गुब्बारा बढ़ जाता है। और आखिर क्या होगा, चाहते हैं जितना जो लेने चाहिए बाप दादा के भंडारी में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा का जी हाजर, बाबा का लो और सागर भी है, तो क्या कमी होगी। लेकिन ये दो बातें सच्ची दिल साफ दिल चतुराई नहीं करो, चतुराई बहुत करते हैं। भिन्न प्रकार की चतुराई भी करते, साफ दिल सच्ची दिल और मोती की लाइन सदा जी करो क्लियर है और क्लीन है। आजकल साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टर्बन क्लियर नहीं करने दे। ये जरूर करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पत दुआ देवे
0: रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलती है, चाहे डायरेक्ट बाप द्वारा मिलती है, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वो समझते भी है कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ऐसी भी पुरुषार्थी है जो छोटी छोटी कामन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते, और हो सकता है कि वो थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वो आगे निकल भी सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एक सैंपल के रूप

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: और

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, हर बच्चे को बेफिक्र बच्चा देखने चाहिए। अगर कभी कभी वाले भी

بدنه يحتك ميري بدن ميري كوت.

छोटा सा फर्क है।

0: मेरा ग्यारह।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

मस्तक में। चमकती हुई चमक रही है नैनों में रूहानियत की श्रेष्ठ वाणी।

Vad kirek.

श्रेष्ठ कर्म के कलम से कीजिए। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य Sheep.

0: इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्वरेखाएं प्राप्त होती है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देश का अपमान, देश का मान फिर भी अलग की चीज है, लेकिन देश का अपमान ये बहुत सूखम है। मेरा इसको ही देश का अपमान कहा जाता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं। अभी फिर भी
2: So

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबसे बड़ी ते बड़ी स्थिति है संतुष्टता की, सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते, बाप को तो प्रिय है सदा संतुष्टता, वही रह सकते जिसको सर्व
2: अर्थात हर बात को
1: उसका खेल देख मनोरंजन करते, माया के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न मिकी माउस के रूप में

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे फरिश्ता रूप साक्षी

Some good luck shit. Brahma Bab Saman Banana. Arthad Frishta Banana. Shiv Bab Saman Banana. Arthad Nera. मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, कोई मुश्किल।

0: ce sacade, a pramanatma o kisve, or koi nahi kar sakta.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बेहद का वैराग सदा

सब तरफ आता है।

appreciate the album, man.

teacher quiere un fumé.

क्यों नहीं करता? अंश है तो वंश होके निकल जाता। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने का, आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देवान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है। और वो खत्म होगा बेहद के वैराग वृत्ति से। सर्विस देख सुना बाप दादा खुश है, लेकिन अब बाप की यही चाहना है कि जैसे सर्विस के फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का। ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति का प्रभाव, क्योंकि आजकल सेवा द्वारा प्रशंसा

சதன் படுங்கே. Summer.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा है कि जो भी विंग्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे धार्मिक है, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन में रखते रहे, वो नहीं होता है। जब फिर प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, फिर से आओ, लेकिन समय पर तो समय बाप दादा ने एक फॉरेन का समाचार सुना है कि एक लव टाइम्स का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें लगातार हर सप्ताह जो भी आते हैं और अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है, लेकिन पक्के रिलेशन में लाने के लिए उनकी पीठ नहीं करते। 6 साल के बाद वो याद आ गया तो आ गया, कनेक्शन हो गया तो हो गया, लेकिन हर एक की एड्रेस पर उनको कुछ न कुछ सप्ताह में बेचना चाहिए, जिससे उनकी पालना होती रहे। बिना पालना के फिर कभी नहीं भरा होता। हर एक विंग को सिर्फ प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रेस भी उनकी करानी चाहिए। नस्तिक आते जाए रखते रहो। इस वर्ष में कितने नजदीक रिलेशन में आए, समझा सुना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृद्धियों
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए, होम वर्क में रोज देते। अगर मनन करो see.

जो

BBC.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सारा जन्म

सकता, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते। कर सकते हो समय बाप के कुछ कर सकते हो, और बाप भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रह्मा बाप का आधार लिया आप ब्राह्मणों को रचने के लिए। स्वयं ब्राह्मणों के बाप भी कुछ नहीं कर सकते। Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Sim.

Chat.

冷ましてよ。

चाहिए, पहले लाइन तो ले लेना चाहिए ना, नहीं लेना चाहिए।

Ishan Kononga Jakichra Wonga Wai Parishan Ongena Osa.

personality. Cosa?

Jesus, Mann.

0: smrtimela. Cari kalapke, fishes.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं, देखती है ना इसने ये किया, इसने ये कहा, सफलता दूर हो जाती, देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत अच्छा, ये तो शब्द हर कार्य में यूज कर लो। स्वभाव वैरायटी है और रहने भी है। स्वभाव को देखा तो सेवा कदम बाबा करा रहा है। बाबा को देखो, बाबा का काम है, इसकी ड्यूटी नहीं है बाबा की। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना, तो स्वभाव देखने नहीं है।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा मुस्कुराती रहती है तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझती है कि बच्चे खड़ी खड़ी तक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाते। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा। बाप से मिलन का सदा आगे बढ़ाते, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलते है। बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्की लदे हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज से देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, पीछे वाले हाथ हिलाओ। Awesome.

plus.

Bobby. John.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: माया और परमात्म बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है। माया का काम है आना और आप बच्चों का से भगाओ, आने देते हैं।

सोचते हैं।

7 मुक्ति का वरसात लाएंगे, वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना, अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वो पूरा कैसे।

0: Ciante mio, नालेश फुलतोन।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे, जीवन में रहते पुरानी दुनिया में रहते तमोगुणी वायुमंडल में रहते ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माए दुख से चिंताओं से अशांति से मुक्त हो, जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो, जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल प्राप्ति। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करती है, नेगेटिव लेकिन ज्ञान अर्थात समझ कि व्यर्थ

0: संपन्न है या कम है? अगर कम है उसको जमा करो, खाली नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Ball.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी आप सभी भी अपना चित्र

Eagle. Some say apa?

चित्र निकालूं।

रचना श्रेष्ठा।

सफर के अगे चार में

See.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yeah.

よし。

0: பரம்தாம்.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन जैसे ये साइंस का साधन कार्य करती है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगी। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा, जैसे ये वायरलेस या

0: Baltoara.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ और

Jakie bracia? Jakie problemy?

0: दृढ़ संकल्प के कारण, तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता? ये तो एग्जाम्पल है आपके आगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते, कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान, न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह इसी को ही जीवन मुक्ति स्थिति कहा जाता। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते, कमल आसन धारी दिखाते। तो आप सभी बच्चों को भी संगम परी जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा हर एक बच्चे को नंबर 1

嘉宾。加一点爷爷 Slav 刚刚三个卡让给了家的阿拉贝里本हो जाएंगे दोनों यान बहुत हो गई है तो समझते हैं समय पर सोचा तो है क्या है उस पर अटेंशन रवासी चालू हो जाती है फॉरेस्ट

अभी तो आप सभी पुराणों की लिस्ट वाले हो, थोड़े नए नए मेजॉरिटी पुराने के लिस्ट में और फाइनल पेपर अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी। तो कोई भी अपने

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चों,

ከሷማን ኪድናፐደ ቸሌቄ አናዲ ሶዶ

जैसे आकाश में भी यहाँ कोई कोई सितारा विशेष चमकता।

चमकती हुई आत्मा हो, याद आया अपना अनादि स्वरूप, सीकर में अपने अनादि स्वरूप में एक सेकंड में उस अनादि स्वरूप

Yoga Academy. अपना

nada.

prawdy i słowa.

think?

Peace.

con Sayuka here.

अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो।

स्वमान देखा।

जीवन में स्वयं मालिक।

से प्राप्त

इसलिए

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा जय थे। एक एक बच्चा खुश निमा खुश नसीब दिखाई दे चेहरे से चलन से क्योंकि इसके लिए बाप दादा चाहते हैं कि अभी से लक्ष्य रखो, जैसे अभी ये 75 वर्ष के कारण सबको उमंग ऐसे ही उमंग को चेहरे से सेवा करने का। क्योंकि दिन प्रतिदिन समय
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Deseo.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अच्छा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: लक्षण विशेष

Slap.

ese. Nuestro amor.

me.

Sechan, botica.

wajan garam sambal.

जैसे अपने दादी को देखा।

संपर्क में इसे, स्वभाव में इसे, सेवा में इसे, संतुष्ट करने में इसे, संतुष्ट रहे।

0: İstediğim haftada. Smeki Smeep.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी भी कमजोरी आ जाए, आने नहीं देना, गेट बंद। गेट तो पता है ना, बंद करो, डबल बंद, डबल ताला लगाना। आजकल सिंगल ताला नहीं चलता। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी रखने का, ये तो अलमेटी ताले लगा देना, कार्ट्रिज का नहीं काट का।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले जाना अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा भी कहते हैं अभी भी, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान रिश्ते रूप में प्रतिज्ञा करना ही है। तैयार हो ना, तैयार हो। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके मारा तो है ही, नहीं तो कैसे है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ। याद आ रहा है परम धाम, अनादि काल से sad।

chamaco.

Israeliti. Pyodetti ki pasnalti. Achcha dekh liya apni puja. Nahi dekhiyo to dekh lena. Abhi last mein संगम योग पर आओ, संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी Purity.

0: सारे क्लब में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: समझ

संभाल के यही हीरा

dich bei dir. Mira Sanskar. Oh.

0: její aşıntıydı andan çipiyen o sampuran şut banane mi vegan'da to jo banane jay diyo
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साधन नहीं है और ख्वाब को तो वैराग है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग, पहले साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर। साधना चिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन यूज करो, बड़े दिल से
0: शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक स्वयं का स्वमान, दूसरा समय का। मैं तो आप साधारण नहीं हो, पूर्वजों
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कहीं जब का थोड़ी बहुत हलचल होती है ना तो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। अगर गहराई में जाए ना तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में बहुत माल लेके आते हैं। ऊपर ऊपर वाले नहीं, ऊपर वालों को तो मछली मिलेंगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते हैं। तो यहाँ भी कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी। ये बाप दादा नहीं कहेगा बातें आएंगी नहीं, जितना आगे जाएंगे उतने सूखम बातें आएंगी, क्योंकि पास में दानर होना है ना। घबराओ नहीं, बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी बात लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो बाहर भी रुई बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पास हुए हो, कितने क्लब पास हुए हो पता है नशा। अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं, अभी रिपीट करना है, नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है। ये स्मृति रखो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो वक्त भी थोड़ा कम हो जाता।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की पट्टी की और पांच ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आदत शुरू भी की और अंत तक आपके सामने, तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ, चलो दो जने हो सेंटर पर, कोई एक सखी को साथ बना दो और अपने बड़ी को सुना दो। तो क्या है, पट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे तो उसका मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा, अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना।
2: दूसरों को कराएंगे
1: भी और अपना अनुभव सुने।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Come on.

உன்கிட்ட வெரசம் கலப்பி ஜலங்கே ஜலங்கேனா தாங்கமே அவர் Yeah.

0: भी लगाने रखेंगे कि जरूर होना चाहिए, वो नहीं चाहिए नहीं। ठीक है, आप फर्क किया और आपके निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ किया ऑफर या ईशान के वश ऑफर और क्रोध पैदा करे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य % अपमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, सम्मान संपर्क में, ऐसे नहीं तीन बातों में तो मैं निर्माण हूं, एक में कम हूं तो क्या हुआ। लेकिन वो एक कमी पाशविता नर होने नहीं देगी। निर्माण झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे ऐसे कह देते हंसी में, क्या मुझे ही झुकना है, ये भी तो झुके। लेकिन झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। निर्माणता निरहंकारी सुतह बना दे। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना दे। Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त कर दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टेंस ऐसी है, उसको नहीं देखो लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला होना वहाँ अपने मन को दिन को किनारे कर। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी। लेकिन झमेले बाहर के समान है क्या? बाहर से मात्र टकराना है, बाहर टेकना क्या? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से उस झमेले के बाहर के भी ऊपर चल तो बाहर भी आपको एकदम सहज अनुभव। मुझे बनना अमृत वेले से, ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी है झमेलों की दुनिया, झमेले तो आएंगे, आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है तो आपकी दुनिया ही वो है तो वही आएंगे ना। आप अमेरिका या लंदन जाएंगे क्या पेपर देने के लिए, सेंटर बड़ी दे झमेला नहीं आवे, ये नहीं सोच। झमेला मुक्त बनना है ये सोच।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस मोटे रूप से

Skilleste. Abosme. Nikalna. Bap dada aaj nahi sunate. Hint to diya na to nikalna. सभी समझदार है, आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनेंगे। लेकिन बाप दादा सेज पुरुषार्थ बताती है कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है ऐसे ही बोल कर्म सब में। सिर्फ तीन शब्द याद रखो और समानता करो। ये तो सहज है ना, सारी मुरली नहीं।

0: सम्मान संपर्क में।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah, the hell, but that.

फिर आप

Antes

Evet.

0: மாற்றமே புத்தியுமே.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सदा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साथ नहीं
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वापस तो

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे अभी सब खुशी में भरपूर दिखाई दे रही है, ऐसे ही सदा रहती है। कोई भी सदा

Yes.

خوش مزاج چهره ایسے ہی

Satan. Gosh.

n'est pas.

しれない。歩くしかない。ヘーパさん、ディスコパさん、ネームワードと、あっち、ドア、イッドネコシメザーチ、パチョ。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जिस भी सेवा स्थान का सेवा का वृद्धि होती है और निर्विघ्न होती है, उसका कारण क्या होता है जानते हैं? कई सेंटर्स में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट बढ़ते नहीं है। और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहे, क्लास करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं है। तो ये रिजल्ट है पालना की। मुबारक।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आती माला भी रुकी हुई? ब्रह्मा बाप ने कहा, चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के मर्ज करते गए, जैसे आपके सोन है ना, तो ऐसे एक एक सोन नहीं, सोन तो बहुत बड़े बड़े है ना, एक एक विशेष देश इमर्ज कर दी गई और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता, अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे और माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितने सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़िए, अच्छे आगे बढ़िए, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है, वो यही बात कि निर्माण

0: et langs med andet. Se varke under time. Nirman da. Kippa jai.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
0: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े मरना पड़े जीते जी, अपने को मोड़ना पड़े सहन करना पड़े सुनना पड़े लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। कोई कितना भी हिलाए आपकी दृढ़ता को, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी जैसे मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये पक्का हो गया, पक्का है ना? चलते फिरते क्या सोचते हैं हम ब्रह्मा कुमारी है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा आत्मा है। ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ, अमृत वेले उठते ये पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तनम में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए। वाह, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कार्य पूरा हुआ और अपने शांति के स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंचे स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो, आपके वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना दे। दृष्टि दूसरे को भी पर पाउडर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं, क्योंकि पाप से दिल का स्नेह की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह, स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते, क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं, बाबा से

0: सर्वस संबंध भी है लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो। सनेही बाप का, सनेही परिवार का, सनेही सुतई बन जाता। क्योंकि बाप समान है ना, तो बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार हर एक को। सने के फिरती से देखते तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, बस नया स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो, बाप से दिल का स्नेह कि जिस समय आवश्यकता है उस समय का स्नेह वो हो गए ज्ञानी भगत। तो इस वर्ष क्या करेंगे? स्नेह का वायुमंडल एक एक को देख के, चाहे कमजोर है लेकिन पुरुषार्थी तो है ना, परिवार का तो है ना, गिरे हुए को गिराओ नहीं। उमंग उत्साह बढ़ाओ, स्नेह का वायुमंडल बनाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्रह्मांड सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, योग बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का भोज वो दे दिया है ना, भोज दिया है या थोड़ा सा रह गए, क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देंगे। और जब पाप आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं दिया है, देखना सोच के हाथ उठाना, बोझ दे दिया है, दे दिया है। अच्छा दे दिया, मुबारक हो, दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। अच्छा नहीं दिया है वो किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना, बोझ लेने के लिए बाप आए, क्योंकि तेसर जन्म से बाप देख रहे हैं, बोझ उठाते उठाते बच्चे सभी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आराम का अर्थ है आराम फिर करना। आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना। वो आराम नहीं करना धनलबान।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया की तो रायल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेंगे, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। स्लोगन तो आपका बहुत अच्छा सबको लगता है, आप बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है बदलना। पुराना स्लोगन है ये तो, नए नए रूप रायल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। आप दादा अंडरलाइन कर माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है और भी रायल रूप में आने वाली है। डरो मत, क्यों देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, तो माया की भी अंत तो होनी है। लेकिन जितना अंत आ रहा है समीप, उतना वो नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी, फिर आपके पाँव में झुके, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, फिर खुद झुक जाएंगे। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, शुभ भावना मिट नहीं जाए, कभी भी कोई दुख दे, आप चैलेंज करते हो, हम माया को प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को पाप समा सकते।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं, एक स्वयं को वरदान देता, जो सहज पाप का प्यारा बन जाता, वरदाता पाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए पाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सोचे

Yes.

चार को नहीं देखते, एक को बहुत देखते, इसी

परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्व

0: छह मास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए बाप दादा तो कहते हैं स्व परिवार लिए इस हद तक के मैं पन से मरना पड़े, मैं पन से मरना शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैं बन से मरना है। तो मरना भी पड़े बहुत मीठा मृत्यु है, ये मरना नहीं है। 21 जन्म राजभाग्य में जीना है, मंसूर है, मंसूर है टीचर्स। तो बाप
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: απανέντελμε φάει δάκαρο και αμ καπίπι κουσί δεν
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम
2: सत्यम शिवम सुंदरम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Peace.

programa

سمرتی میں چلتی ہے، آپ سبھی انبوسی

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो शब्द साथी और साकी, जब बाप दादा साथ है तो साखी बन की सीट सदा मजबूत रहती, कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। साथ है लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते, किनारे कर देते। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पर जाता है या कोई ऐसी बात होती है ना, तो साथ का भी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते ऐसे। साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कहेगा कोई, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मेरी साथ है, ये भी नहीं कहते कि तेरी साथ है, हर एक कहता है मेरी साथ है, मेरा साथी है ना। ऐसे मन से कहते हो या मुख से? मन से, मन से कहते हो, पीछे वाले मन से कहते हो, हाथ अच्छा उठाते हो, हाथ हाथ हिलाती है माना हाजी, बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठी है और अपने परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाती है जो देखती नहीं है कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते, बाप भी साखी हो जाते, साथी से साखी बन के खेल देखते। ऐसे तो नहीं करो ना, जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो, बाप को अच्छा नहीं लगता। तो साखी पन का तख्त चोरो नहीं, जो जो अलग अलग बुशारत करती हो ना, उसमें थक जाती हूँ। आज मन सागा किया, कल वाचा का किया, समान संपर्क का किया, थक जाती हूँ। एक ही बुशारत करो, साखी का तख्त नहीं छोड़ना, और कुछ नहीं माँ तख्त नशी, साखी बन के तख्त नशी आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेंगे, नीचे तभी रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। और तब कोई को भी दबा दो तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना अंदर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप तो खुश रहते

0: 5G.
1: Fix.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये ब्राह्मण जन्मी याद और सेवा के लिए और कुछ करना है क्या? यही है ना, श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है। सेवा के घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है, अलग है नहीं ना? अच्छा, बैलेंस है। अगर 100%

0: जो बादशाहों के दीप जगेंगे, कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। आप विश्व में
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: डॉक्टर्स का वर्क विपाप दर।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबके दिल में कौन क्या कहेंगे, मेरा बाबा

मेरे पर हर एक बच्चे के मन से देखो तू कौन समाया हुआ है दिल में मेरा बाबा। हर एक के दिल में मेरा बाबा मेरा बाबा। क्योंकि ये प्यार बाप और बच्चों का अलौकिक प्यार सारे कलप में इसी जन्म

Polo, Harry के दिल में कौन? मेरा बाबा। हरे का चेहरा कितना मुश्किल एक बच्चा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो बाप दादा खुश है, हाथ उठाने में होशियार सभी है। लेकिन अभी it's

0: Voici. Nimet bonne vie. Onko. Tikkas kepi kusio tie. Ar. Melan mebi. Bot kusio.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पर ही चीज को अपना बना के रखा है ना, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल के रखे, छिपा के रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समापति समारोह करेंगे, करेंगे, करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो, जहां मन होगा ना वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरी की चीज है, वो नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना, आपकी भ्रमण नेचर है या पुरानी नेचर।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मानस से, शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके चरचित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना, मंदिर पे जाते हैं तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना, दुआ मिलती जन्म में भी।

0: ese.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जी

见。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो सदा खुश रहती है वो हाथ उठाओ, सदा खुश खुश रहती है, खुशी तो रहती है ना, खुशी तो है ना, खुशी तो नहीं जाती, खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी परमात्म गिफ्ट है, परमात्म गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बात बात में हो गई खुशी क्यों जावे, बात पावरफुल है कि खुशी परमात्म गिफ्ट, तो ये भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए, सदा फेस खुश दिमा रहे, खुश दिमा रह सकती है, खुशी रह सकती है, रह सकती है, कांधे लाओ, रह सकती है, अटेंशन देंगे तो हो जाएंगी ना, हो जाएंगी, हो जाएंगी, पीछे वाले, पीछे वाले हो जाएंगे। तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे, एक मास के बाद सभी से ये चार्ट मंगाएंगे कि एक ही मास खुश रहा। आज की तारीख याद करना, सभी को कह रही है, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं। एक मास की ट्रायल करो, कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना, समझना बात राइट है रॉन्ग है क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समा, दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती, समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। तो एक मास का पेपर है ये, खुश रहना है, हो सकता है अल बेला बन छोड़ो, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं करना ही है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्राह्मणों की रोकने से रुका हुआ है, समय को समीप लाने वाले आप, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो, तो हो जाएंगे। रोज ये गीत याद करो, आप घर चलना है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

जैसे जाओ वैसे अभी अभी मन को

चल नहीं।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Radio.

Hitler, no.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब आपके बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा
2: Yes।

devo mancar. Mercácia. Mano, piabra.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

Sick.

什么？就比家的话，慢了讲。

Bob Kesan.

0: मेरी साकार में आ जाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

श्रम छोटी सी